0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज सोमवार का दिन है, 28 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio sbs.nl। उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए, टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए और DAB प्लस रेडियो की जरिए हॉलैंडीज के बीच में मिडन नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में ये प्रोग्राम भी अपना मोटर कार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन दिनों पितृपक्ष भी है, तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पहला भजन की ओर। और पहला भजन हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

मित्रपक्ष तो सभी को बधाइयां पेश किया जा रहा है और पितृपक्ष के मौके पर आपकी सेवा में एक सुंदर सा पितृपक्ष मंत्र बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

ये और सभी सुनने वालों की सेवा में तो चले प्रोग्राम में पितृपक्ष मंत्र की ओर हम आपको ले चलते हैं।

पितृपक्ष मंत्र आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। 8 मिनट बाकी है सुबह 7:30 में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हरिहरन की आवाज में सुंदर सा शिव जी का भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एल्बम का नाम है चार धाम। चार धाम एल्बम का नाम

रेडियो एसबीएस के जरिए शंकर शिव गोविंद के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो एसबीएस के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार खास भजन जो पेश किया जा रहा है आज की भजन यात्रा के प्रोग्राम में, एक सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया है और ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए खासखबर एक सुनने वालों ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से बस प्रोग्राम में पेश की गए। सोमवार का दिन 28 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पेमला जैन की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है, शिव जी का भजन। सोमवार का दिन है।

और रेडियो SBS की जरिए पैमला जैन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शहरी तरफ से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। उदित नारायण और खासतौर पर अलका जी की आवाज में फिल्म जोश, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

Udit Narayan और अलका जी के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, बाहर की ओर देखा जाए, बादल छाया हुआ मौसम है, अंधेरा अंधेरा सा मौसम और रिमझिम बारिश भी हो रहा है। तो इस मौसम में हम आपको ले चलते हैं एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में।

फिल्म जुआरी अभिजीत और साधना सरगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार, अपना डाक हॉरोस्कोप, ज्योतिष शास्त्र भी रोजाना आप जाकर इसी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट के जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए। और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। अलका अलका जी की आवाज में फिल्म जूली, एक फिल्म जो 2004 में रिलीज किया गया है। अलका जी की आवाज में गाना का बोल भीगी भीगी।

में ये गाना बसपुर का भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका, फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना आतिफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है। मतलब

प्रोग्राम में तीन मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और चून का यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारी बहुत सी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा सुबह के वक्त पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। कुछ सुनने वालों है जो जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर ये प्रोग्राम को सुनते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और घर पर भी काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं। सभी को स्वागत किया जा रहा है देश विदेश में। सुनने वालों, जो प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। और चले गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता जी की आवाज में जंगली फिल्म का नाम 1961 का फिल्म नहीं 1961 तक का फिल्म है। फिल्म जंगली लता जी की आवाज में। कश्मीर की गली हूँ मैं,

0: जंगली फिल्म का गाना बस पेश की गई लता जी की आवाज में, कश्मीर की कली हूं मैं। फिल्म जंगली उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई।
1: सोने की बनी हुई सड़क पर
0: चले फिल्म कालिया उसी फिल्म का गाना की ओर हम आपको ले चलते है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म कालिया।

गाना जो पेश की गए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म कालिया उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। द बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म है, फिल्म कालिया। 9:00 प्रोग्राम में 13 मिनट व्यतीत हो चुका है, 3:30 ओवर नई स्टूडियो उत्तर हो चुका है। सोमवार का दिन 28 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इन दिनों पितृपक्ष है, आप सभी को भी खबर किया जा रहा है। आम्स्टरडम शहर के अंदर में आंद्रे हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और आंद्रे मोहम्मद रफी की आवाज में एक खूबसूरत गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में। मोहम्मद रफी की आवाज में आम्स्टरडम शहर का रहने वाला इसमें एक खूबसूरत गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में। मोहम्मद रफी की आवाज में आम्स्टरडम शहर का रहने वाला

Ik ben hier in Goedsoort film Capion Aur Kahan. 1970 का फिल्म 1970 का फिल्म मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश की गए प्यार से दिल भर दे। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। हमारा प्रोग्राम इस वक्त डेन हाग शहर के अंदर में सुनते हैं विनोद डेन हाग शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और वो भी जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं हमेशा अपना कंतूर में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और खासतौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम एक प्रोग्राम जो हमारी बहुत सी सुनने वालों को पसंद है। दो घंटा सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पुरानी नख़्मे जो पेश किया जा रहा है। तो विनोद एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज में नादान फिल्म का नाम। चले मिलकर सुनते हैं और साथ में मिलकर गुनगुनाते हैं। रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है जीवन भर ढूंढा जिस

0: Den Haag शहर का रहने वाला विनोद का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। माइटी मुकेश की आवाज में नादान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। विनोद डेन हाग शहर के अंदर में रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना और आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Buitenlandsminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met systemen voor thuiswerken. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorkum richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. En 33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: सर है 9:00 प्रोग्राम में 1 मिनट बैठी हो चुका है। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना हमारी बहुत सी सुनने वालों बस पसंद करते हैं और स्पेशल आज की प्रोग्राम में गाना को मांग करने वाला है उत्रेख लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी आज भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमारा प्रोग्राम अपना गार्डन टाउन में बस सुनते हैं और आज भी वॉल्यूम जो है हाई वॉल्यूम के साथ प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। और राजन गिरधारी एक प्यार भरी गाना हर एक के लिए बस मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। नील कमल फिल्म का नाम है, 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म है, फिल्म नील कमल।

प्यार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई नील कमल फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। उत्तरेख लाइट्स राइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। वैसे ये गाना भी काफी पसंद किया है तेलफखाओ शहर का रहने वाला भाई शांति प्रकाश को ये गाना भी बहुत पसंद आया। हाँ, हमारा ऐप पर यही लिखा है कि 20 साल गाना। हाँ, गाना तो बड़ी खूबसूरत प्यार भरी गाना है जो राजन गिरधारी ने मांग किया आज के प्रोग्राम में। और हम देख रहे हैं जोर तोर से ऐप भी अंदर आते हैं, सुनने वालों अपना अपना गाना को मांग कर रहे हैं और स्टूडियो की ओर भी काफी सुनने वालों तार कर रहे हैं, ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं। सभी को वेलकम और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और कहा कि वो भी गर्मा गर्म कॉफी के साथ प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं और एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में बस मांग किया है। फिल्म का नाम 19

रेडियो SBS की जरिए फिल्म नाइट इन लंदन मोहम्मद रफी की आवाज में गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। गाना को सुनना चाहते थे फिल्म नाइट इन लंदन उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। विजय आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और गाना को खास तौर पर मांग करने वाला है इस वक्त मार्सन में है और वहां पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम भी बैकग्राउंड पर बस सुनते हैं और वो है अमित सिवदत्त। अमित सिवदत्त भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और एक गाना काफी पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है तलत महमूद और आशा जी की आवाज में। मेम साहब फिल्म का नाम बस चले मिलकर अमित सिवदत्त का मांगी हुई गाना को सुनते हैं और पेश कर रहे हैं अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए। हाँ, अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए ये गाना पेश कर रहे हैं। कहता है दिल

गाना आज के प्रोग्राम में दलत महमूद और आयशा जी की आवाज में पेश की गई और खासतौर पर मेम साहब फिल्म का नाम नीहती 956 का खास फिल्म का गीत पेश की गई। कहता है दिल कि तुम हो मेरे लिए, गाना पेश किया आज के प्रोग्राम में सभी अपने भाइयों और बहनों के लिए, वो भी मार्सन में इस वक्त काम पर है, नौकरी कर रहे हैं और हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम बैकग्राउंड पर सुनते हैं अमित सिवदत्त। और अमित सिवदत्त ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए, अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए। अमित सिवदत्त शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा भी सुनते हैं रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला, अभी अभी स्टूडियो की ओर भी तार किया कुछ बातें हुए और शीला एक काफी प्यार भरी गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम महल, उसी खास फिल्म का गाना रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला ने मांग किया है।

बार और आशा जी की आवाज में गाना पेश की गई रोटरडम नोट की रहने वाली शीला। शीला ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शीला आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है, तार करने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आज 28 तारीख सितंबर है और आज जबकि लता जी जिंदा होते तो आज उनकी जन्मदिन होते। तो आज के प्रोग्राम में इंडिया भारत देश नोएडा, इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश लता जी की आवाज में और लता जी की याद में एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है, तो चले मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में और लता जी की याद में। आज अगर वो जिंदा होते तो उनकी जन्मदिन होते। इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश ये गाना मांग किया है।

uit de film Barsaat Ki Ek Raat. Kishore Kumar aur Lata Ji ki awaaz mein gana bus program mein pesh kiya ja raha hai. Aaj ki purani film mein sangeeton ka program mein ek sunne walon hai jo is khaas gana ki maang kiya hai kisi ke liye bari pyar ke saath. बरसात की एक रात फिल्म का नाम किशोर एंड लता अपने प्यार के सपने सच हुए. 030-2266-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है. जब भी आप कोई भी गीत सुनना चाहेंगे तो आप तार कर सकते हैं, ऐप भी आप कर सकते हैं.

खूबसूरत गाना अब उस प्रोग्राम में पेश किया, ये बरसात की एक रात फिल्म का नाम, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना, अपने प्यार के सपने सच हुए। आज की प्रोग्राम में ये गाना एक सुनने वालों बस मांग किया किसी के लिए बड़ी प्यार के साथ जो

बेल्टोवन शहर में चंद्रा भोला सिंह, चंद्रा भोला सिंह भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और एक गाना आपने मांग किया है टाइटल सॉन्ग, और वो भी फिल्म अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग लता जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा है। मांग करने वाली है फेल्टोवन की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह, ये खास गाना मांग किया है।

अगर तुम ना होते उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग उस प्रोग्राम में पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना फेल्टहोफन। फेल्टहोफन शहर के रहने वाली चंद्रा भोला सिंह ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और इस प्रोग्राम में भी आपको हर एक को मौका दिया जा रहा है एक गाना मांग करने के लिए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11 और ऐप द्वारा भी आप अपना गाना को मांग कर सकते हैं। एक गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और गाना को मांग करने वाला है रोटरडम शहर से प्रदीप ने तार किया है और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। गाना है रोटरडम शहर से प्रदीप ने तार किया है और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। गाना उनको काफी पसंद है।

धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ गाना मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। गाना बहुत पसंद करते हैं तो आज की प्रोग्राम में बस सुनना चाहते थे और इसी तरह से ये गाना पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारा प्रोग्राम इंडिया भारत देश में बहुत सी सुनने वालों भी सुनते हैं और इसी तरह से प्रोग्राम को भी सुनते हैं और वो भी इंडिया भारत देश अलीगढ़ में धर्मेंद्र चौहान भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आपने गाना मांग किया है, फिल्म का नाम दिल ही तो है, 1963 का फिल्म, 1963 का फिल्म है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर।

की आवाज में गाना बस पेश किया जाएगी। इंडिया भारत देश अलीगढ़ से धर्मेंद्र चौहान के खास मांगे हुई गाना बस पेश किया जा रहा है।

भी सौर सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गए। इंडिया भारत देश अलीगढ़ से खासतौर पर धर्मेंद्र चौहान ये गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में। आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख धन्यवाद। हर एक को पूरा मौका दिया जा रहा है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं या तो स्टूडियो का तार की नंबर पर आप ऐप भी कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम फोर बेड़ों में सोनिया भी हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और प्रोग्राम में भाग लिया है एक बड़ी ही खूबसूरत गाना के साथ। सागर फिल्म का नाम किशोर कुमार और लता जी की आवाज में फोर बेड़ों की रहने वाली सोनिया की खास मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सागर किनारे दिल ये पुकारे ओकन हेल मोई नंबर बड़ी ही खूबसूरत गाना फिल्म सागर उसी फिल्म का।

0: सागर किनारे दिल ये पुकारे गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था सागर, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फोर ब्यूरोख की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सोनिया आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 8 kilometer file tussen de afrit Geldermalsen en Kerkdriel, een kwartier vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is door een ongeluk dicht tussen Delfzijl en Appingedam in beide richtingen. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। घड़ी की ओर देखा जाए सर है 10 का वक्त और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम और रहेगा, यानी कि आधे घंटे और प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है पेश किया जाएगी। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हमारा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। डेल्फ्खाउ शहर में शांति प्रकाश हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और शांति प्रकाश ने कहा कि वो एक गाना सुनना चाहेंगे भूपेंद्र की आवाज में, इसलिए कि भूपेंद्र की आवाज उनको काफी और बेहद पसंद आते हैं। तो मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है एक दो फिल्म महक, तरस रही है नजर अब तेरी ही जरूरत है। तो चले मिलकर सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है और गाना भूपेंद्र की आवाज में मांग किया है डेल्फ्खाउ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश। शांति प्रकाश ने मांग किया है

भूपिंदर की आवाज में फिल्म महक, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। डेलफ्राउ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है भाई शांति बरकास, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। शहर उत्तराखंड टेम्स ड्राइव 237 से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। फरमाइश इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों काज आपको पेश करवाना है, फरमाइश देना है 5 यूरो पर फरमाइश, और तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो है सस्ती दामों में बोधम प्राइस में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। जरूर एक बार तार कीजिए और हर एक इन्फॉर्मेशन लीजिए, मेल द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर फिल्म कोई नूर का गीत मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।

कोहिनूर फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आपने सुना उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का खास मांगे हुए गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। आज के प्रोग्राम में बहुत से सुनने वालों बस अपना अपना गाना को मांग किया है, तो चले अब की बार फिल्म दो रास्ते उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। सुतबेर शहर की रहने वाली नलिनी, नलिनी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, तो फिल्म दो रास्ते का गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में।

फिल्म दो रास्ते मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी, नलिनी की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से बस सुनते ही रहना। रोजाना ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है और वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का एक गाना पेश होगा। लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में गाना पेश किया जाएगी, तुम ही मेरी मंदिर। फिल्म का नाम खानदान। ब्रेडा शहर का रहने वाला रिकार्डो गफूर खान एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में। और आपको मालूम होना चाहिए आज 28 तारीख सितंबर है, अगर लता जी जिंदा होते तो आज लता जी के जन्मदिन होते, सालगिरह दिन होते। तो चले मिलकर लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है। खानदान फिल्म का नाम, रिकार्डो गफूर खान, ब्रेडा शहर से ये गाना को मांग किया है और एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है।

0: ही आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई तुम ही मेरी मंदिर खानदान फिल्म का नाम और खास तौर पर रिकार्डो गफूर खान ब्रेडा शहर का रहने वाला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत और आखिरी सुनने वालों की ये मांगी हुई गाना बस पेश की गई रिकार्डो आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम ब्रेडा शहर में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो के अंदर अभी तक सुनने वालों बस ऐप कर रहे हैं, तार कर रहे हैं गाना के लिए, लेकिन आपको खबर किया जा रहा है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है यहीं से खत्म होने पर आ गए हैं। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया, गाना मांग किया, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी जो प्रोग्राम को भी सुने हैं, इसके लिए भी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

0: पुटे मिया लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथिया नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्राचीन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: संडा 15 नवंबर संडा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज टू जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit Narayan.

0: रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।
1: हाँ।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अलका एंड विनोद राठौर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अब की बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226611। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 24 घंटे पर दाग बराबर एक बार होता है रेडियो एसबीएस का कंटूर का टेलीफोन नंबर

जान शान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर। अब की बात

इस प्रोग्राम में पेश की गए कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम

SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.nl वेबसाइट की जरिए। चलिए प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: बिछोड़ा दिल तड़पोंदा
1: सोनू निगम और श्रेया के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

खान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चले प्रोग्राम में अब की बार हम

की आवाज में ये जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

hier en dan. आज भी बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

भेजती गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आपकी बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर उत्तराखंड से।

गागे की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोर्टवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। पुरानी फिल्म प्रोफेसर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: कुकीज और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: एक सूरज है जिसे दहन लग गया, कितनी रोशनी थी और कितना अंधेरा हो गया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी फिल्मी गाने नखमे आप हर एक के लिए पेश किया जा रहा है। चले लता जी की आवाज में अबकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए आप स्टूडियो की ओर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई, देखा है तेरी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। खूबसूरत प्यार भरी नख में आज की इस प्रोग्राम में

मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार किए जा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। तो चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

हजरों बीठे की गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। ये गाना जो है काफी पुरानी फिल्म का है, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज।

काफी पुरानी है फिल्म का गीत, बस प्रोग्राम में पेश की गए। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में एक फिल्म रागनी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मोहम्मद रफी और गीता दत्त प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में, और फिल्म का नाम है रफू चक।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: अपने तन मन।
1: आज एक साथ महके हैं दो गुलाब,
2: एक डोर में होते हैं दो मोती,
1: एक साथ धड़के हैं

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशलि क्रमलाल, जो हार्ट वेलकम हीट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल्ट रिएक्शन कर नो टेड सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 032-65-65-60. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम द प्रॉक्टर फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

कभी सोचा न हो इतना प्यार करो, इस गसोंग दोर श्रेया घोषाल। दित प्रachtig liedje kwam uit de film The Body. कभी सोचा न हो इतना प्यार करो, इस गसोंग दोर श्रेया घोषाल। दित प्रachtig liedje kwam uit de film The Body. Gaan we daar verder met uit de film Mohabbate.

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयु द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इस फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

आज रपट जाए तो हमें ना बुलाइयो इस द फिल्म नमक हलालन इस गजोंग दोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले. Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh Kam Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक हेफ दी गोहोर्ड आउट द फिल्म तरकीब en uit de film Sare Sapne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer Zara Zara Si Baate Teri Mujhko Yaad Aati Hai.
1: Haseen Lamhe Shareer Lamhe Sharmile Lamhe Jhijakte Lamhe Pighalte Lamhe Dhadakte Lamhe Mohabbat Mein Guzre Ye Tamam Lamhe दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशांदर अखिल सचदेव एंक्वा मायो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कंट खुशांदर सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बैनी दियाल अनमोल मलिक एंड अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2 हाँ उधर फर्दर में हमेशा तेरे साथ रहूँगा आउट द फिल्म कृष्णा कॉटेज किस्म उधर कमाल खान.

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग दो अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाँ तो फैदर मैथ जुबेर नौटियाल मैत आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले. इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम आउट द फिल्म जवाने जाने मन. एंड आउट द फिल्म अभिमान कॉम्ट गजोंग दूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे.

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रख्तगे म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium, een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia. Live in concert Udit Narayan en Aditya Narayan. For more info,

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

हिंदू की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: हाथ से
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
0: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
0: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं दिल प्रातः लीजिए इसको सॉन्ग दूर कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल उत्फुल्ल लीजिए इसको सॉन्ग दूर अभय एंड श्रेया घोषाल अर्ध फिल्म पानीपत कौम सपना है सच है।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं, जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,